अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा सतगुर का दर्शन पाए जियो दंडावत बंदन अनेक बार सर्ब कला समर्थ डोलन ते रख प्रभु नानक दे कर हाथ सुकाह टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह

दाम क्याहो होती साठ रावण होते सो रंक नह जैन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खाच रहया बीच न राई हो चरण कमल मन भेदियो भूजन सुरत संज

दूसरा पाठ आया डूबो। सो साध संगत जी ये कई बार इत्थे भी डूबिया ही पढ़ी जांदे, डूबिया नहीं पढ़ना, ध्यान दे नाल अखरां नूं पहला दर्शन करके फिर शब्द नूं साध संगत जी उचारना। कबीर बांस बडाई बुढ़िया इओ मत डूबो।

आज काल काल पाठ भरा करना काल नहीं कह जाना जिवें उच्चारण किया गया है आज काल तज जाहोगे ज्यो कांचुरी भुयंग। हाँ

ध्यान दे नाल जमक भी लाउणी इस पंक्ति दे विच ते विश्राम भी कबीर बैद मुआ रोगी मुआ इत्थे विश्राम लाउणा पहला मुआ पाठ जिहड़ा है उत्थे जमक जरूर लाउणी कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार

0: ही उचारण करना ठांडी नहीं कहना। ठाडी का अर्थ हुंदा है खलोना, बिंदी लग गई ते ठांडी, ठांडी का मतलब हुंदा है ठंडा। सो इस करके ठाडी उचारण ही करना, बिंदी का उचारण बिलकुल नहीं करना।
1: मात बस।

0: क्या भया, जौ मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सभ्य कौ खाए।
1: गले पाठ पुलय करना, मान मुनि मुनवर गले, मान सभ्य कौ खाए।
0: कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बाहिया एक। लागत ही पोहे मिल गया, परिया कलेजे छेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक।
1: सिखा पाठ भी कस के करना, सिखा नहीं कहना।

जह अनभाओ तह भय नहीं, जह भाओ तह हर नाहे। कहियो कबीर विचार कै, संत सुनहु मन माहे। कबीर जिनहु किछु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हमहु जो बूझ

0: दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए।
1: बढ़ंतो टड्डे दे नाल कई बार इत्थे बढ़ंतो पाठ पढ़िया जांदा है, जिवें उच्चारण कीता है भारा करके टड्डे दी आवाज टिप्पी दी भी आउणी चाहीदी बढ़ंतो। हांजी
0: ना हर भज्यो।

0: कोमल बड़े कोमल, मेरा शरीर बड़ा सख्त, तुसी खिच के मैनू लत मारी है, थोड़े चरणा कोई मौत ते नहीं आई, कोई तकलीफ ते नहीं हुई। दातू हैरान, खिच के लत भी मैं मारी ते हाथ जोड़ के मेरे अगों खड़े, इन्ने विनम्रता। मक्के दे इमाम ने खिच के गुरु नानक दे सीने च लत मारी है, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी, कि कौन महान काफरां दा काफर सुत्ता पे, सीने च खिच के लत मारी। वकत दा रैबरी पुरुष, ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति, तमाम रब्बी शक्तियां नाल भरिया होया हिरदा, कि कौन महान काफरां दा काफर है, खुदा दे घर दी तरफ पैर करके सुत्ता पे। उत्थे सतगुरु कहंदे ने, ऐ इमाम, जिस पासे खुदा नहीं है उस पासे मेरे पैर कर दे, भाव ते इतना सी मैं जिधर देखना है ते खुदा ही है, ते खुदा ही। भाई गुरुदास जी लिखते ने, फिरिया मक्का कला दिखाई, सीने च लत खा के और महान गाल सुन, बहुत वड्डी गाल है, कौन काफरां दा महान काफर सुत्ता पे, किसे सुहागण नूं वेसवा कह देना है, बहुत वड्डी गाल है, रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नूं काफर कह देना, ये केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी, पर सतगुर सहन कर गए। बाहर दी यात्रा सारी हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी और विनम्रता दी यात्रा है। बाहर दी यात्रा में सब कुछ हो जावा और सब तो अगे निकल जावा, अंदर दी यात्रा में सब कुछ खो जावा, मिट जावा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर मनुख ना कुछ हो के सब कुछ हो जाता है, और बाहर सब कुछ होके भी कख नहीं होता, यह भी महज करते हैं, यह भी ध्यान गोचर है। बाहर अगे निकल के भी इनू पता चल जाता है कुछ भी नहीं, ठीक है मैं बथेरिया तो धन तो अगे निकल गया, शक्ति तो अगे निकल गया, प्रभुता तो अगे निकल गया, या कला दे चगे हैं, गुणा दे चगे हैं, रूप दे चगे हैं, रंग दे चगे हैं, जात दे चगे हैं, बाहर सब कुछ मिलके भी पता चल जाता है कुछ नहीं मिले, बाहर सब कुछ होके भी पता चलता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अंदर जद मनुख सब कह देता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इस अवस्था ते पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है, परमात्मा वर्गा हो जाता है। अंदर दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, ना कुछ होने दी यात्रा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बड़ा सुंदर इस दे ते एक आलम ने अपना ख्याल दिता है, अज राह चुनार के सलामत न कुनत, समाप्ति करिए, रस्ते दिच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन नाल किसे दा रस्ता ना रुके, तू किसे दे रस्ते दा रोड़ा ना बने, तू किसे दे रस्ते दा कंडा ना बने, तू किसे चल दे मनुख दे पैरां नूं रोके ना, अज राह चुनार के सलामत ना कुनत। कई मनुख मनुख नहीं आउंदे, रोड़े आउंदे ने, कंडे आउंदे ने, उन्हां दी कोशिश आउंदी है रोकिए, ये पछड़िया ही रहे। अज राह चुनार के सलामत ना कुनत, बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनत, खलकत दिच मखलूक दिच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं आते, बस चिनगारियां ही आते ने, जिथे बैठे कोई ना कोई पांबड़ ते बालन गए, कोई ना कोई अग ते लाण गए, कुछ ना कुछ ते चिनगारी छोड़न गए। बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनत, दर मस्जिद गर रवे के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खानद ओ इमामद न कुनद। कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है, अगे अगे होके नमाज ना पढ़ी, मता तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हाँ और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर वन ना, मेरा पहला नंबर, बाकी सब पछड़े हुए, बाकी की नहीं कुछ भी नहीं। इस घर से जो कुछ ना कुछ हो जाता है वो सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, उदा सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इन मैं पूर्ण तौर से धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। दो मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहिंदे ने। ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा है। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अग्गे है, उस तों कोई अग्गे है, किसी चीज दे च वी अग्गे होवे, प्रभता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखा नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, इह अगे कहां है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे आउंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, इह अगे कहां है। इस नूं पराई तात कहिंदे ने, महाराज ने जिक्र कीता है। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला, पराई तात लई फिरदा, इह अगे कहां है। अंदर दी यात्रा, जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली, पीछे चलण विच खुशी होंदी है उसकी, उत्थे ना कुछ होण विच उहनूं खुशी मिलदी है। जद कोई अगे जा रहा आउंदा है उहदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है, सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उहनूं खुशी मिलदी है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ है, जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, तात आउंदी है, पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जांदा है उस दिन परमात्मा हो जांदा है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया, किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए ते खोलांगे अज इतनी सेवा प्रवान करनी, साहेब रहमत करन थोड़े ध्यान नूं अंतरमुखी लै जाण। यात्रा अंदर दी होवे, और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने वो कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उहनां विच जिंद जान आउंदी है, उहनां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है, और वो ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने, सतगुर सारिआं नूं भगती दा तोहफा, भगती दा इह महान दान झोली विच पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करा, सुन के भरोसा बणदा है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकदा है? निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जांदे ने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

सतनाम प्रतापुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगति फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख के दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है, सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है, जड़ा नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए, जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का, उस अरूप का, उस गुप्त का खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने, बन रही ने मिट रही ने, पर इन्हां लहरां का पैदा होना, इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परल सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है, खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है, ना उसनूं लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ओ मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागन का, मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हुए, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आ भजन का नहीं। वाहगुरु वाहगुरु करते हैं किसनों रस आ नहीं, पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आ है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखा अधिया जागिया ने, अधिया सुतिया हुई ने। संसार नू वेख रही ने, निरंकार नू नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने।
ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਪ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ

नहीं मौत। कबीर कहते ने कि राम नाम दा हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों तो उसके अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उस दे अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहिंदे मैं तलाश कर रहे हां उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकदे ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहिंदे ने बाजार नूं। आप कहिंदे ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरिया की मंडी च बिकेगा ना। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर हैं, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पए ने मंदिर, या किधरे कर पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल दियां पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। वैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है। सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैं कर मशीन ही होगी, मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों के बाजार ने, उन्होंने नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्ह दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का काम शुरू होया। बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे।

0: इलम जवाहरात पन्ने जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है या मोटा मांस बिकता है जौहरिया की दुकाना को। जयपुर का जड़ा जौहरी बाजार है उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा ये देश है, हीरिया की मंडी हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है। हर शहर विच हीरिया की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहने जिहड़ा हीरा कोल है वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है। जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह उत्ते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती। इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा। तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लब पे है, बाजार ते लब पे है, पर उत्थे जिहड़े आंदे ने पारखो नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान की कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे ने पारखो ही कोई नहीं, ते जद पारखो कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है। जद पारखो ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार विच एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने। मैं कह नहीं, विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने। मैं कह नहीं, सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वकत कढ़ो, मैं थोनू दुकान पर लै जाना, अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही हैं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहिंदे ने हीरा लैके मैं बैठ गया, कोई पारखो ही नहीं है, किसी नूं समझ ही नहीं, नहीं पटन, नहीं पारखो। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिदां खुदा दी कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारियां च गुरु दा कोई बोध नहीं है। बड़ी भीड़ जा रही है मंदरां दे, भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पटन, नहीं पार खो। आप कहिंदे ने कदी कदाई भ्रमण करदे आ करदे आ किसे बाजार विच पारखू भी मिल जाते, समझ पता है, सत की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही। और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके है, किन्नी क दया है, ये किन्ना क प्रेम है, ये दृष्टि कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही कोय। गुण तो सारे उस दे ने, रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भरमन करदिआं करदिआं खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया, उन्हूं समझ आया। समदृष्टि किसनों कहिंदे, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हूं परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते हैं मन खुश हो जाता है, चलो पारखो मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नूं दाद देंदा है तो उसनों जिहड़ी रूहानी खुशी आती है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नूं कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि कुछ बोलां नूं कुछ अखरां नूं तरतीब दे दईए तो कविता दा जन्म हो जांदा है, आवाज नूं तरतीब दे दईए तो संगीत दा जन्म हो जांदा है, और जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे दईए तो भगती दा जन्म हो जांदा है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया। आवाज नूं मर्यादा विच करना साधना दी लोड़ है, बोलां नूं तरतीब विच करना सीखना पैंदा, मेहनत करनी पैंदी है, जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब विच करना अभ्यास करना पैंदा, उंज नहीं होंदा। तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जांदी है जद कदी कोई पारखो भी लभ पैंदा, गल नूं समझदा है, पता है। पर कबीर कहिंदे ने खुशी मेरी फिर निराशा दे बदल दी, क्यों? पारखू है, ग्राहक नहीं है, लेना नहीं चाहता, समझते है नहीं, पटन नहीं, पारखू नहीं, गाहक, वो ग्राहक नहीं है। पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इसके अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। आप कहिंदे ने कदी कदाई किसे सत्संग किसे शहर किसे मंडी देखदा पारखू भी लभ पिया, ग्राहक भी लभ पिया, लेना चाहता है, उहदे अंदर लैण की भी तड़प है, उहदे अंदर लैण की भी खिच है, वो लेना भी चाहता है, वो प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहिंदे ने बहुत मन खुश होंदा है कि ग्राहक भी लभ पिया, पर आप कहिंदे ने मेरा दुख अपनी थां ते ग्राहक ते लभे है पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे च मंगदा है। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, कहिंदे ने जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए वो कोई खास नहीं आउंदी। पहाड़ दे उपर गीटियां पत्थरों च मिल जाणगे, हीरे ते लभणे पैंदे, ਸੰਖ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਂਝ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੋ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਇਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਿਕਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਓ। ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਅੰਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ, ਅੰਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਮਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੈਸੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਉਸੇ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਬਸ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਨੰਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ मैं देखदा वाकई ये छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है। संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दिया शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां की पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल टुकदी छावां वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नूं जाणिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्च

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख-वख जीवां विच परमात्मा ने वख-वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनों का करोड़ा माइल्स का करोड़ा कोह

भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहनिया उदाहरणा कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने सकूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि ओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदो चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए। चंद्रमा जदो ए अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदो रुख चेंज करदे, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यो चढ़िया चढ़ते वाले पास्यो शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए। गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं, इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टेको के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकार दे रहे,
सिर मैं अर्ज करनी चाह

0: ना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की थी। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, निहो कवल जल जानिया है, खेड़ मूव खाले, खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पे कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे, पानी रुकण दी देरे ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं वो खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। वह आसमान दे उते, वह धरती दे उते, जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया, ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार ले बखेर ले। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ये कैसी प्रीत है? भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी है पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, न्यो कवल जन जानिया, खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है? पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभण वाली, ओ रस्ते विच टुटण वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगता सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना वा, कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रब रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकता। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आऊं। वैसे तां जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याख है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है। जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होने दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होने दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तो उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनी गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें, परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें असमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना, बंदगी करके ही जिंदगी है। जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साईं नूं नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, ओ तां अपने बचपन तो ही रब नूं इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहिब अजे बचपना है ते कुरान उन्हां नूं जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर ओ कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत वे असी कहां कि मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं, अपने अंतले समय भी वो महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने, अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कह लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या, बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी, पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कह लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही, शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो, विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू, प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी नहीं होनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं, अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरना विच ओना ने फिदा कर दिता, ओना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणा नू अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सचे पातशाह, ए ता आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर ए दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकाण वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट कर ले। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, को के उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरां पैदा हुईयां, ते जदो पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी ओनू लहर धक्का मार के खबे कदी सजे ओनू सारा दिन लहर अपने ठोकरा दे वास विच केवल अपने ठोकरा नाल खबे सजे नू तकदी रही। ते बाबा जी ने उथे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नू प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जेड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जानियो जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा है वह कदी प्रेमी नहीं हो सकता, वह कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नू पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नू ते बाणी विच ए गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना है जिदे कुल सुगंधी होवे जिदे कुल निर्लेपता होवे जिदे कुल अपना सुहापन होवे जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे। की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरां मार दे छड परा इहो जिहा पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड्डन दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार ना इहदे तो निर्लेप दा ना सुगंधी ना रूप ते ना भवरे तां की होया। जे पानी ठोकरा मारदा है आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ए गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने इहदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ऐ मनुख प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचों निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मां दी दूरी होण दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना है। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी ता होवे जेड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती ते बाणी विच बचन कर गए कहन लगे रे मन ऐसी खारशों प्रीत कर। रे मन दा अर्थ अपने मन नू संबोधन कीता अपने मन नू मुखातब कीता। कहन लगे रे मन ऐसी खारशों प्रीत कर जैसी जल कमले। जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है लहरी नाल पछाड़िया जे लहरां ओनू उठ के पछाड़ दियां ने धक्के मार दियां ने पी विगसै असने ओ लहरां दियां ठोकरां विच भी खसी जांदा है ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दियां पिंगां झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत कीती जिवें कमल दा फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत पिया करदा सी। जे किसे ने वट्टा चुकिया जे किसे ने दीवाना किया जे किसे ने मस्ताना किया जे किसे ने पागल किया सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिवें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उतना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मथी विच उदासीनता ते तड़ पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है ते जदों किते तोटा आ जाए सच जाणो ओ मच्छी दी तरह लुड़चन लग पैंदा है तड़फन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर कैसी कहन लगे जैसी मछली नीर जिमे मच्छी पानी नू प्रीत भी कर दी है ज्यो अद कहो तो सुख घना जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यो अद कहो तो सुख घना मन तन शांत शरीर ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आत दी आनंद विच है ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है मच्छी पानी तो बिना किसे नो समझौता नहीं कर दी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो इस तरह कहन लगे रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर जैसी चात्रक में जिमे एक पपिया स्वांती बूंद नू प्यार प्या करदा है जिमे एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा तालाब पानी दे भरे ने पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा दरिया पानी दे भर के वगदे ने पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वक्रे वक्रे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांति बूंद नू प्यार करदा है ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है सच जाणो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहीदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण इहदे नाल होर अर्ज करना चाहना चात्रक कदी भी समझौता नहीं करदा स्वांति बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया दाता जी प्रेमा भगती की है उन्होंने एक प्रमाण दिता ओहा प्रेम प्री प्रेमा भगत की है ओहा प्रेम प्री कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के खीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे गुरु नू छड़ दे कीमती हीरे चुक ले जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर ले पर नाम दे मोती नू छड़ दे जे कोई ओदे सामने कीमती गज ए भी मोती कह सामने लिया के रखे तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहंदे ने जेड़े प्रेमा भगती करन वाले ने ओ कह रहे ने ओहा प्रेम प्री कनक मन गज मोतियां लालन न है नहा नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड़ तेनू आ तख्त दे देने तेनू आ दुनिया दा हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने अगो उत्तर मिलदा राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नै ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती मेनू तेरे चरणा दी शरण चाहीदी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले। पर प्रेमा भगती करने वाला बूंद नू एक बूंद ना पवही के जितने मर्जी पानी दे भंडार होण पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है कि प्रेमा भगती की ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असि पढ़ने। प्यारो प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकन दा यतन करिए पांच सात मिनटा भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण, निंदिया करनी होवे। मैं कई बार अर्ज करना, बंदा बीमार होवे ना, हमदर्दी प्रगट करन जाइए ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा। घर दे भी कहणगे बुलायो ना, डॉक्टर साहब ने रोकिया है, वरजिया है, इना बोलना नहीं। आम गल्लां करदियां ऐसता ऐसता बोलेगा। किते थोड़ा जिहा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है, सच जाणियो पता नहीं कित्थों आवाज निकलदी, ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इन्ना उच्चा बोलदी है? रसना संसार लई कूकेगी, रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पै प्रेमा भगती विच, बाबा नानक जी कहिंदे फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी, सिर तो पैरां तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा है, जे वेहे गुरु अर्जुन साहब श्लोक सहस्कृति, हे रस गए मधुर प्रै तोयंग, हे जबान हे रसा नू चखण वालिए, तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने, तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने। हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, जदों किते सत नाम वाहगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है, तू मुंह च है ही नहीं। अंज लगदा जिवें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग, जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है, तां उह अग लांदी है। सिर्फ तू तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रहे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख दे नहीं। ध्यान दिया जे, जे जबान दी शक्ति, जे रसना दी ताकत, जे जेवां दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी खलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े, कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी है। जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी है, चेते रखे हुए दे कुल शक्ति है। जे रब रब जपन लग पे ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी है। कली दूरी पांदी नहीं, ये दूरी मिटा भी सकदी है। हजूर ने बाणी विच मेहर कीती, जदों उन्हां ने प्रेमा भगती भी जुड़े ते बाबा नानक जी नूं जे कोई पुछदा है कि सतगुरु जी परमात्मा नूं पाउण दा मार्ग की है, ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह मार्ग है इक दू जीबो लख हो है, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, इन्नी भगती कीती, इक जबान तो लख जीब हो गई, लख दीब तो भी लख हो गई, ते उस भी लख जीब विचों एक एक जीब नाल लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपिया। ते बाबा नानक जी कहिंदे इन्नी कमाई करे ता जगत दे मालक भी तू मिल सकदा, कि इहो जी प्रेमा भगती को कर सकेगा? बाबे नानक जी दा अपना अनुभव है, इक दो जीबो लख हो है, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां, एक नाम जगदीश, प्यारिया ए तराह पत पवड़ियां चढ़िया होए आकीस, एने रस्ता ए ही मार्ग प्यारे नूं पाउण दा। ते जे अंदर तेरा रुख है ते बाहरों प्रेमा भगती वाले दी रीस करने, फिर सुन गल्लां आकाश की, कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है। प्रेमा भगती ओदी नदर नाल मिलदी है, ओदी बख्शीश नाल मिलदी है। कूड़ा कूड़ी ठीस, ठीस दा अखरी अर्थ हुंदा गप मारना। कहिंदे ने जे ओदी नदर नाल तेरे कोल प्रेमा भगती नहीं, एवें जमीन ते रेंगण वाले कीड़े, तू आसमान विच उड़न वाले पंछियां दी रीस ना कर। सुन गल्लां आकाश की, कीता आई रीस, ओ ता प्रेमा भगती आ जिहड़ी अवस्था तैन दसी, एक दू जीबो लख होए, ए नानक नदरी पाई है, ओदी कृपा नाल मिलदी है। ते जे कृपा तो बिना कूड़ा कूड़ी ठीस, कूड़े बंदे दी कूड़ी गप होवेगी, कूड़े बंदे दा कूड़ होवेगा। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा, सतगुरु ने प्रेमा भगती कीती, उस भगती की एक मिसाल हजूर ने खोर दिती। दातार कहिंदे ने कि दुध नूं चो के लियांदे ने, जिमीदार चोंदा है ग्वाले घरां विच चोंदे ने, जिस बर्तन विच दुध चो के लियांदा उस बर्तन विचों दुध दूजे बर्तन विच पलटिया जांदा है, भांडे विच पलटदे ने। हुण जिस भांडे विच दुध चोया उहदे अंदर दुध उहदे बर्तन दे नाल उहदे कंढिया नाल जरूर लगा है। ते सियाणियां सवाणियां अपने हाथ विच लै के पानी ते उस बर्तन दे विच बाल्टी विच भांडे विच छत्ते मार के उस दे अंदर लगे हुए दुध नूं उतार दियां सन ते उस पानी नूं कहा जांदा सी दुध विच हंगाल पा दिता है। ये बड़ा पुरातन शब्द है तुहाडा सभ्याचार दा। कहिंदियां सन दुध विच हंगाल पाया है, जदों हंगाल दुध विच पा दिता, हंगाल दर जी ओ दुध नाल मिलिया होया पानी हंगाल पा दिता दुध विच, ते दुध नूं परत के उन्हां ने चुल्हे ते रखिया। प्रेमा भगती की है, बाबा नानक जी ने कला रब नूं वाहिगुरू वाहिगुरू जबान नाल कहण नाल नहीं प्यारियो, उस प्रेमा भगती विच अपना सब कुछ ही कुर्बान किया जाता है, अपना सब कुछ फिदा किया। हुण उस दुध नूं जिहड़ा हंगाल वाला सी चुल्हे दे उत्ते रखिया, अग दी लाट निकली, अग दे नाल पहला उस विच मिलिया होया जिहड़ा हंगाल पानी सी ओ पाप बन के उड्डन लगा। जदों पानी पाप बन के उड्डिया ते आखिर बाबा जी दे समझाण दा तरीका कि प्रेमा भगती की है, कहिंदे ने असी उस पानी नूं पुछ लिया कि देख दुध तां कीमती सी, तू तां अपनी खुश किस्मती समझ कि पानी दे छट्टा सै तू ते तेनू दुध विच मिलदिया सार दुध ने देख अपने विच थां दित्ती, इहते कोई थां दिंदा एक दूजे नूं? कहन लगे पानी तेनू तेल विच मिलाया जाए कदी तेल तेनू थां देगा, तेनू घ्यो दे मक्खण विच मिलाया जाए कदी मक्खण तेनू थां देगा, कदी घ्यो तेनू थां देगा, दूजे तरल पदार्थ कदी तेनू थां देणगे? देख तू दुध दा अंदर किन्ना कु खुल दिला है, ओ तेनू आए नू उहने अपने विच थां दे दित्ती। थां ना केवल दित्ती, उहने कहा ठीक तेरा रूप मेरे तो वखरा है, जे मेरे कोल आ गया मैं तेनू अपना रूप देना वा। पानी नू दुध ने अपना रूप दिता, कला रूप ही नहीं, पानी इकले दी कीमत नहीं सी, पर जदो दुध विच मिलिया दुध ने कहा जे मैं 5 लीटर दी मेरी मपाई है ते तू 1 लीटर है ते आपा हो गए 6 किलो, 6 लीटर हो गए। चेते रखी मैं अपना मुल थोड़ा जा कटवा लांगा पर तेरी कीमत नाल जरूर पवांगा। ते पैंदी है दुध दी नाल पानी दी कीमत पै गई। ते बाबा जी कहन लगे ओ बेवफा देख थां दिता जिन्ने, नाम अपना तेनू दिता दुध, पानी ना रहन दिता तेनू, अपना रूप दिता, अपनी कीमत घटा के उन्ने तेरी नाल कीमत पवा ली, ते इना बेवफा है कि सेक लगन दी देर तू पहला उड गए। हजूर कहिंदे ने उस पानी दा उत्तर सी बाणी दे बचन ने, कहिंदा इसे करके तां उड्डिया वा कि जिन्हें मैनू रूप दिता रंग दिता कीमत पाई मेरा चित करदा मैं इनू सेक लगन तो पहला पहला अपने आप नू क्यों ना साड़ देवा, क्योंकि मैं अपने प्यारे दा सेक नहीं सेक सकदा, मैं अपने आप नू कुर्बान कर सकना। इह वे प्रेमा भगती, नानक नाम निरंजन जानियो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, ते प्रेम लिव ला के भगती करके सानू क्या रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर, कैसी जैसी जल दुध होए, जिमें दुध दी ते पानी दी प्रीत है। ते फिर देखो इथे आके मुकम्मल प्रीत बनदी है, जिमें मैं उदाहरणा पहला दित्तियां ने। जे हुण मैं ये कही जा कमल दा फुल खिड़िया ते पतंगा उहदे ते आ गया, ते आप कहोगे वेखो बंदा किहो जी गल करदा, कमल दे फुल ते भवरे हुंदे ने, पतंगे तां दीवे ते जांदे। जे मैं कहां जी दीवा बलिया ते कीड़ियां आ गई, तुसी कहोगे मूर्खता ही वाली गल, दीवे ते कीड़ियां, कीड़ियां तां मिठे ते जाणगियां। हुण शब्द सुरत कीनी वरखाई, तां ते अंगद अंग संग भयो शायर, ओ समुंदर बने ते समुंदर दे विच नीयां नहीं रखियां जांदियां, समुंदर लोकां दे घर नहीं बणांदा, समुंदर अपने विचों बदल पैदा करके केवल बरसात ही करदा है। ताते अंगद अंग संग भयो सायर समुंदर बन गए। तेन शब्द सुरत कीनी वरखाई उस गुरु अंगद साहब ने इनी कृपा की उन्होंने शब्द ते सुरत की वरखा कर दी। आओ एदी प्रोड़ता गुरु ग्रंथ साहब करनगे। कहन लगे लंगर चले गुर शब्द हार तोट ना आवी खटी है। जेड़ी खटी बाबा नानक खट के गए ने ना ओदा तोटा नहीं आना। इस तो पहली एक बचन है नीव किने रखी नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दै। बाबे नानक ने नीव रखी। हुण अगे ए स्पष्ट होवेगा कि गुरु नानक साहब झड़ी लांदे पए ने गुरु अंगद साहब के नहीं रख रहे ने। बचन है लंगर चले गुरु शब्द हर तोट ना आवी खटिए खर्चे दित कसम दी दर ते बाबे नानक दी रब दी दिते हुए खर्चे नू गुरु नानक साहब दी जोत गुरु अंगद साहब वंडन लगे ने। खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबटिए। हुण देखो शब्द ने खर्चे खर्चन वास्ते दिता बाबे नानक ने खजाना नाल कह दिता आप खैदी आप खाया जे खैर खैर दर ते जेड़े मंगण आउणगे उन्हां दी झोली विच पाया जे। हजूर ने कहा कि लंगर चला गुरु शब्द हर तोट न आवी खटिए खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबटिए। इथे एक बचन कीता कहन लगे मेरे दाता जी के आप जी उते एनी कृपा भी हुंदी होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए। नूर दी वरखा हो रही है गुरु अंगद साहब उसे बरखा नू लोकां तक पहुंचा रहे ने क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हें अपना अंग बनाया है। खोवे सिवत किसम दी नूर अरसों कुरसों चट गए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक बचन आप रोज होर पढ़ दियो बरे हैं दरगह गुरु की कुदरती नूर। हुण बरे है नहीं बरे है वरे दर से वर रहा है वरख रहा है की वरखदा है कुदरती नूर परमात्मा दे घर विचो रूखानियत दे बदल बन के गुरु अंगद साहब उन्हां दी बरसात पै करांदे ने ते जेड़ा आउंदा उन्हूं नाम नल पे दिंदे। तांते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। ते गुरु नानक साहब ने की कीता इनू भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कहा कह लगे प्यारियो के गुरु नानक साहब ने मेहर की पारस होवा पारसों गुरपदेश गुरपरचे गुरपदेश विच रहना है चंदन होवा चंदनों है दीपक ते दीपक प्रगासिया है। हुण धन गुरु अंगद साहब शब्द सुर दी खेड नहीं मरतांदे कैसी वरखा पै करदे ने। भाई पारो वर्गा आउंदा है ते ओ जदों आके पुछदा महाराज हंस और परम हंस की है ते बाबा नानक जी दी जोत गुरु अंगद साहब वरखा करके कहिंदे ने के पारो ते भाई पारो जुलका सी। पारो हंस हुंदे ने जिहड़े दुध पानी नखेड़दे ने ते परम हंस हुंदे ने जिउंदे जिउंदे जी अपने शरीर विचों बदे हो जांदे ते तुर पिया। कहिंदा फिर परम हंस असी ते नहीं बनना। बाबा जी ने कृपा की गुरु अंगद साहब की नदर न गुरु अमर सादास दे वेले परमहंस बनिया। ते भाई गुरदास ने अपनी रचना विच क्या कहन लगे पारो जुलका परमहंस पूरे सतगुर कृपा धारी। पूरे गुरु ने मेहर की। एक प्रमाण मैं होर दे के अगे चलना के गुरु ने मैले हिरदिया विच नाम की वरखा कर दी गुरु अंगद साहब ने। हुण भाई जोत रसोईया है ते भाई गुरदास ने बचन भी कहे कि जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी पूरे सतगुरु पै सवारी। जोध रसोईया देवता ए असल सी ब्राह्मण। इस भाई जोध ने इन्नी लंगर भी सेवा की कि माता खीवी जी नाल दो सिख होर सन जेड़े सेवा करते सन। एक भाई केदारू केदारा ते दूजा भाई साहब भाई जोध। ए जोध ब्राह्मण सी ए जोध खैरा जट नहीं क्योंकि दो जोध सन। एक बाबे नानक दा सिख सी जिदे तो पौड़ी सुन के बाबा लैणा जी करतारपुर गए ओ खैरा सी खडूर साहब दा रहण वाला। ए भाई जोध ब्राह्मण सी ए बाहरों आया सी। मेरे गुरु अंगद साहब किवें वरखा करदे ने नाम दी। भाई जोध आया इन्हें बाणी सुनी कीर्तन सुनिया मन चाया भी लंगर सेवा करा सादे कपड़े पा के माता खीवी नाल सारा दिन भाई जोध ते भाई कदारा लंगर विच रहिंदे सन। भाई जोध दे मन विच कदी आ जाना नीवियां जातां वाले भी इत्थे आए क्योंकि ब्राह्मण सी कई जन्मां दा उहदे अंदर ए सी खून ए सी कि मैं उच्ची कुल दा हां। मन च आया फिर एक दिन आया मना जे भांडे मांज के भी जे इत्थे लंगर विच खौंचे मार के भी लकड़ां पाड़ के सारा दिन धुप्पे चुल्हे सामने बह के भी तेरी मैल ना गई ते मैल जाएगी कित्थों। कहन लगा अजे भी खौमे दी मैल चुकी फिरना मैं ब्राह्मण। उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे तू झूठा है अपने मन नूं कहिंदे तू झूठा है तेनू कोई खक नहीं सुचा भोजन छके कल तो बाद जिहड़ा अंदर जात वाला भूत वड़िया इहनू झूठा भोजन दिता जाए। प्यारे ओ सारे भांडे चुकने पर कुछ कु पतलां चुक के एक पासे रख लैणियां इह हकीकत है इहनू अत कथनी ना समझियो। गुरु अंगद साहिब किवें बरखा करदे जदों सारिआं चले जाणा जेड़ियां पतलां लुका के रखियां होणियां उहदे विच्चों सब्जी भाजी दा किनका मात्र चुन के एक थां ते कठियां करके खा लैणा। माता खीवी जी देखना सारा दिन सेवा करदा लंगर कित्थों छकदा है। अज देखिया कि जदों सारे चले गए दोपहर दे लंगर तो बाद लोक के सारियां पतलां हूंज के आ पिया खाए। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा साहिब नूं कहा कि बाबा जी भाई जोध सारा दिन सेवा करदा पर पंगत विच लंगर नहीं छकदा। नहीं मन्ने गुरु अंगद साहिब फिर एक दिन अचनचेत आए इस नूं जे पढ़ना होवे ते पढ़ियो भाई वीर सिंह उहनां दा अष्ट गुरु चमत्कार। आए देखिया कि यह सज्जन पत्तल दे विच्चों चुक के छोटे छोटे किड़के खांदा पिया। सतगुरु ने देखिया कहन लगे भाई जोध यह की करदे पए हो। इको दम कंब गए हाथ झाड़ के उठ खलोते कहन लगे की कर रहे सो। कहन लगे दाता अंदर झूठा ते झूठियां नूं झूठा ही भोजन चाहिदा है। अंदर झूठा है तुसी पंगत विच क्यों नहीं बैठते। कहिंदे ने अगे अंदर जात वाला भूत बैठा जदों नाल कोई बैंदा है ते कहिंदा मैं ब्राह्मण मैं उच्चा। कहन लगे इहनूं रहण दिओ नीवा इहनूं उदों समझ लगेगी जिन्नी देर तक पत्तलां विच नहीं रहिंदा ते लंगर दे भांडिआं विच नहीं रहिंदा। सच्चे पातशाह देख के त्रुट पे माता खीवी जी कोल आए सिर ते हथ रख के कहन लगे भाई जोध तू सच्यार है तू झूठा नहीं तू सच्यार है अज तो बाद लंगर विच बैठ के भोजन छकना है। जदों कहिंदे ने इन्ना शब्द सिर ते हथ रख के कहा सारे विद्वान ये मानते ने कि गुरु अंगद साहब दे हत्थां विचों एहो जी मानो वरखा निकली के भाई जोध देवता बन गया सिर तो पैरा तक नाम दे नाल पिज गया। इत्थे फिर भाई साहब ने कहा जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर सारी ते अखीरली तो के कहन लगे पूरे सतगुर पैर सवारी। पूरे गुरु ने उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रख दिता किरपा कर दिती अज पंगत विच बैठ के लंगर छकन लगे। किसे पुछ लिया कि अज इत्थे क्यों बैठे हैं। कहन लगे झूठ वाला भूत निकल गया है हुण अंदर गुरु बैठा ते गुरु नूं अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा भोजन ही देईदा। अंदर गुरु है हुण ओ गुरु अंगद साहिब समुंदर बन गए जेड़ा उन्हां कोल आया उन्हां बरखा कीती। तां ते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है। गुरु अमरदास जी दी पट कीर्त जी कहिंदे कथा बयान तो रहत है वो अकत कथा है। गुरु अमरदास की अकत कथा है ते किवें का अकत है जी उन्हां नाल बचन क्या एक जी साडी जीव एक है कछ कही ना जाई। की बयान करांगे गुरु अंगद साहिब दी कथा अकत है असी नहीं बयान कर सकते क्योंकि पट पिछे भी कह के आए ने के दाता जी कन खर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

जो तिहारी हम न सगत कर सुख तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधार सो कहो कल गुरु से भी आए अहनिश सहज सुहा दर्शन कर।

0: नानक कहूं नसि जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाको की जय सद नमस्कार,
1: जापे मन लगा प्रम मीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: आत पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीता पी गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रख है,
0: रोकी आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपट रहो ते अंधे अंधार,
1: घटाउ स्यों जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ सी असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आपसे ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुतावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरो गोविंद
0: मन तरकी उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सात संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभ गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण हो ही सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक निवही खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव नित
0: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

न चकर बकर फिरा चत्र चक मन ही पुरती न लोक चौदह खेख जग जापी जह जाप आद देव नाद मूर्त थाप्य सब जह थाप परम रूप नीत।

हिरासल फिकान है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनी मै रजाय कर ही मैं समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बेहस्तुल निवास है के सर्बल गवान है हमेशल रवान है तमामल तमी

मन मन प्रणाम गुण गण मोदाम अर बर अगंज हर नर पर भंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अन पवनास मन मन प्रकाश।

चंद नमो सूरज सूरज नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद

ते मतंगन मान मलेंगे, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। दीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया, तोरत दे समलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया, साहब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया, दानव देव फने दन साचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे, साध समूह परसन फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरात अव जोन त्रिलोको राज करेंगे, कोट स्नान गजाद कदान अनेक सुअंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात।

पूजत है पास को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

तुम्हे छाड़ कोई अवर न त्याहु, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ द मुझे उबरिया, मरन काल का त्रासन वरिया। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो जू करिया हो रच्छा। राख ले हो मोह राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तारा, काल पाए शिव जू अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

सेव सकत आप उपाय का करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सिस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत।

प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेत्यावै चेत्यावन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहब होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दीदार सेवा संभाल दा दान। प्यारे पंथ खालसा जिया नूं बख्शो जी, निमाणिओ के माण दे ताणिओ के ताण दे ओट्यो की ओट। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी। आप जी के हजूर चरण कमला पास अरदास बेनती सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी के पवित्र स्वरूप दे प्रकाश करन दी सेवा करदे आं, अमृत गुरबाणी दा नितनेम करदे आं, जाप करदे आं, समुचियां सेवावां निभाउंदे आं, होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुलां दी खेमा बख्शो जी। अगे तो समत बख्शीश करो जी, पावन बाणी दा भाव संगतां दे हिरदे ते वसाउणा, सुरत शब्द दे नाल जोड़नी, संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां, सिखी सिदक भरोसे दी दात बख्शीश करनी, खालसा पंथ नू राज भाग कौमी कर, खालसा दी दात बंदी सिंघां दी तंदरुस्ती रिहाई बख्शीश करो जी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी दर कर दे सेवक बेटी मनप्रीत कौर दीआं मन दीआं भावनावां गुरमत अनुसार पूर्ण करनियां, गृहस्थ जीवन दा सुख बख्शीश करना, परिवारक जीवन विच अगे वधाउणा, कुलजीत कौर समूह परिवार नू चरणां दा प्यार ना बाणी सेवा सिमरन दीआं दाता, सिखी सिदक भरोसे दी दात बख्श के निवाजणा, तंदरुस्तियां बख्शिश करनिया, सतगुरु महाराज साहब जी रहिंदे घर चढ़दी कला दे सह संपूर्ण करियो जी। सतगुरु महाराज जी कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर है, देख सजाउंदे हजूर बाणी पढ़दे होईआं भुलां दी खेमा बख्शो जी। अगे तो समत बख्शिश करो जी, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाव भोग हर राय, लग्या होया भोग प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे, जो छके आप जी का नाम वाहिगुरु जपे, सतगुरु जी कृपा करो, पवित्र हुक्मनामा साहब जिया दी दात बख्शिश करो जी, उपरंत दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो सही।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ने बेअंत तरस किया है साडे जीवां दे कल्याण दे वास्ते निरंकारी दर्शन दीदार सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। तुर की बाणी नितनेम कीर्तन दे रूप दे विच बख्शिश कीती है। साध संगत जी गुरबाणी पाठ बोध समागम जो आप धन गुरु का लगी धन पातशाह महाराज जी ने तख्त श्री दमदमा साहब विखे 9 महीने 9 दिन 9 घड़िया और 9 पल दे विच गुरबाणी दोपहर तो पहलों लिखवाउणी, दोपहर तो बाद फिर लिखवाई हुई गुरबाणी दे अर्थ करने। बेअंत संगतां हाजरियां भरदियां, पर 48 ओ सिंघ सन जिहड़े कंटीन्यू हर रोज आरंभ होण तो पहलों आगे सज जांदे सी ते समाप्ति तो काफी बाद विच फिर जांदे हुंदे सन। उन्होंने कामकार सब संकोच लिया से, जिहड़े बदेह मुक्त हो गए जिहदे विचों फिर गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बाबा दीप सिंह साहिब शहीद भाई मनी सिंह साहिब इन्हां दोहां सिक्कां दीआं ड्यूटियां लातियां वी तुसां ने अगां इह विद्यालय जो गुरमत दा आ इहनूं चलाउणा आ, अर्थ बोध तुसां ने गां सिखां नूं देणे ने। साध संगत जी फिर 2 टकसालां चलियां, 2 गुरमत विद्यालय चले, तख्त श्री दमदमा साहिब तो चलण करके इन्हां दा नाम दमदमी टकसाल पै गया। टकसाल जिथे घड़िया जावे, गुरमत टकसाल दे विच जीवन घड़िया जांदा, घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। तो संगत जीओ उसीना पसीना फिर टकसाल दे मुखी अमृत गुरबाणी दी संथ्या, अमृत गुरबाणी दे अर्थ और होर कीर्तन जोड़ी ए सब सिख्यावां विद्यार्थियों नूं दे के गुरु चरणां नाल जोड़दे ने। तो जिन्हां दे विचों फिर टकसाल विचों पढ़ के विद्यार्थी जदों उन्हां नूं योग समझा जांदा आ, फिर ओह विद्यार्थियों नूं गुरद्वार टकसाल दे जिहड़े मुखी हुंदे ने उन्हां वल्लों कहा जांदा कि भाई हुण तुसीं इत्थे पढ़ाओ, फिर वह सिंह सत बचन कह के टकसाल दे विच विद्या पढ़ाउण दी सेवा निभाउंदे ने। जिन्हां विचों उस्ताद कुलदीप सिंह जी जिन्हां नूं हुण कथा दी हाजरी भरनी है, जदों सिंघां दा संघर्ष चलिया, संघर्ष दे विच इन्हां ने सेवावां कीतियां, समां बणिया, रूपोश भी होना पिया, फिर जेलां च जाना पिया, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜਦੇ, ਹੋਰ ਨਵਾਜਣ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਬੜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਦੀ, 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ 25 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਚ ਦੀਵਾਰ

गुरु रूप सत्संग जीओ फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर का हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा त्यास कीता जांदा है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदिया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है जानना है इह ते रस्ते दा वेखणा है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नूं समझण वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहने बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत विच भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं। जैसे किसी थान पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहे नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वक वक मंत्रां दा रटन ये रस्ता है, राम जपना, अल्लाहू जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलता है, कोई बहुत आस्ता चलता है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे, बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उठे कोई गल हो।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 99% ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
कोई समा नहीं कटता, कोई संघर्ष नहीं करता। इस तरह 10,000 इकट्ठ विच मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह आसू होंदा, फिर 10,000 दे करीब जगह आसू होवन जो थोड़े जाग पे ने, दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं, दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात है, सूरज दी रोशनी सानू दान दिच मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है, बहुत कुछ जिस दासी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है, दाता वो दे रहे हैं। लेकिन 10,000 सत्संगियां दे चों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया, एक उसनु जग्यासु कहिंदे, जाग पे है, मेरा सुत्ता होया नहीं, जाग पे है, मेरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया, कुछ समझ है, सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका ले बैठा, कुछ समझ है, उस जगह आसो। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषों ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 निवासी किसी मस्जिद दे चोवन, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चोवन, 10,000 दे करीब प्रेर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन, एक जगह सू होंदा, बहुते नहीं होंदे, एक होंदा जो जाग पे है, समझ आ गई, मेरी दात लई ओ हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा, श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़ता, हुण दाते वास्ते पढ़ता, समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब अवन ते कोई एक जग्यासु होंदा है, फिर गिनती कर दिन 10,000 जग्यासु होवन एक साधु होंदा है, एक साधु होंदा है। जैसे जैसे पहाड़ दे उपर चढ़िए ना ते जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा, जितने जग्यासु ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जग्यासु होवन उन्हां च कोई एक अद साधु आउंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पिया, मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लई पूरा समा कढ़दा, पूरा संघर्ष करदा, पूरी मेहनत करदा, पूरा जप तप करदा, मेरा प्रभावित ही नहीं होया, मेरी समझ ही नहीं आई। जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति ले यतन करन लग पे, मेहनत करन लग पे, बड़ी मेहनत करन लग पे, इनू साधु कहंदे। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा जो पहुंच गए, एक इस तरह एक करोड़ां च कोई कद बनेगा, कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है, मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई, हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, सब आकार रखते हैं, मोटे हैं,
अकल मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहिंदे ने जब साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हर परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ए प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तेनू समझ सके, तेनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ए पैर ने। प्यार दे सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Sniper.

जेड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ ना कुछ ते रस, कुछ ना कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी प्रगट आता है, प्रगट हो गया। उसके बोलों में बरकत आ गई, उसके बोलों की सत्या आ गई, उसके बोल मुतासर कर लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया उन्हें अर्जी लिख दी और औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया। इन्हें जरूरत किस तरह की थी? लेकिन फकीर मनिया, पर मनिया फकीर सी मुसलमान, जिसकी कदम बोसी हासिल करने फखर महसूस करते सन। फकीर ने आके कल आवे, मैं पूछांगा ज़ैबुल नसा को, कल आवे तोर दिता। महलों के अंदर जैसे आया तो मत्थे की तीवड़ी वेख के वट वेख के ज़ैबुल नसा ने पूछ लिया, अब्बा हजूर मिजाज तो ठीक ने, गल की है? इतने उदास, इतना चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ। अर्जी अगों रख दी। उस अर्जी नू पढ़ के, बोलां नू पढ़ के ज़ैबुल नसा हस पाई। औरंगजेब कहिंदा, बेटा तू तो इस तरह हसी है जिवें किसी मूर्ख ते हसीदा है। ज़ैबुल नसा कहण लगी, अखर लिखण वाला कोई बहुत सियाणा हो नहीं सकता। औरंगजेब कहिंदा, नहीं वो तो फकीर है, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़े उसके खलीफे चेले ने, उसकी कदम बोसी हासिल करने लोकी फखर महसूस करते हैं, वो तो महान है। ज़ैबुल नसा ने एक दलील बड़ी प्रबल दिती, अब्बा हजूर अख में कोई रड़क पै जाए और खास करके दोवें अखां च कोई कंकरी पै जाए, अखां वेखण तो असमर्थ हो जांदियां। फिर वो कंकरी अखां नूं नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं कहना पैंदा मेरी अख च की पै गया, अख दे चे तौफीक नहीं देखण दी। मैं उस फकीर नूं दसांगी, तेरी अख च एक कंकरी है तो कढ़ा वेगी। उस अर्जी दे थले एक शेर लिख दिता, ईरान, अफगानिस्तान, भारत विच, पाकिस्तान विच, बंगलादेश, ये शेर बड़ा मशहूर है शायरां दी दुनिया च, विद्वानां दी दुनिया च। दर सुखन पिन हांशु दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये शेर लिख दिता। आख्या, बापू ए अब्बा हजूर दे देना उस फकीर नो, शर्मसार होवेगा, रोएगा। वाकई इस शेर नो पढ़ के फकीर शर्मसार होया, माफी मंगी। गर सुखन पिन हांशु दम दर बरगे गुलमा निंदे बो, हर छे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये जो कुछ वो कह रही है, मुख्तसर में अर्ज करा, दो मनुख एक बगीचे दे कोलो लंघे जा रहे हैं, ते बगीचे दे चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है, बगीचे च बड़े सुंदर सुंदर फुल ने, महक बाहर आ रही है। एक कहिंदा है, कितनी मधुर सुंदर महक आई है गुलाब दी। दूसरा कहिंदा है, किथे है गुलाब? कहिंदा होवेगा किधर है, सानू महक आ गई, दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। अगे जाके फिर कहिंदा, कितनी मधुर कितनी सुंदर महक आई है नरगिस दी, चमेली दी, मोगरे दी, पर ये किथे ने फुल होणगे किधर है? महक आई है, मुअत्तर हो गए। ज़ैबुल नसा कहती है, जिसनू महक दे फुल दे दर्शन नहीं होए, जिनू सुगंधी दे फुलां दे दर्शन नहीं होए, उन्हों फुल दे दर्शन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ऐ फकीर, मेरी महक ते मेरे बोलां च सी, मेरी सुगंध ते मेरे बोलां च सी, ते मेरे बोलां च मैनू तू नहीं देख सकिया, क्योंकि हड मास नाड़ी का पिंड पिंजर आके देखेंगा, जरा आज है तो कल नहीं, की देखेंगा? मैं तो प्रगट हाँ अपने बोलना, दर सुखन पिन हांशु दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, जिमें महक फुल दे चेते, फुल तो प्रगट आती है,